0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
2: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अजीज़ोवा दोला। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मली रहमान और दुशंबे के मेयर रुस्तम मली ने वारज़ोबा जिलों में एक नए सीमेंट उत्पादन संयंत्र के निर्माण कार्य के शुरुआत की। ताजिकिस्तान में तीसरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तोजे सोमोन आयोजित किया जाएगा और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। दुशंबे के वारज़ोबा जिलों में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मली रहमान और दुशंबे के मेयर रुस्तम मली ने एक नए सीमेंट संयंत्र के निर्माण कार्य की शुरुआत की। ये परियोजना सरकार के उस निर्देशों के तहत है जिसमें देशों में 4 नए सीमेंट कारखाने बनाने की योजना शामिल है, जिनके कुल उत्पादन क्षमता 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। नया संयंत्र लगभग 17 महीनों में तैयार किया जाएगा और इसके वार्षिक क्षमता 1.2 मिलियन टन सीमेंट होगी। निर्माण के दौरान 1,125 से अधिक लोगों को अस्थायी रोजगार मिलेंगे, जबकि संचालन शुरू होने पर 1,000 से अधिक स्थायी नौकरी पैदा होगी। परियोजना आधुनिक तकनीकी पर आधारित होगी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सीमेंट उत्पादन किया जाएगा। ये परियोजना स्थानीय निवेश और चीन की कंपनी सिनोमा के सहयोग से लागू की जा रही है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मली रहमान और दुशंबे के मेयर रुस्तम मली ने वारज़ोबा जिले के उत्तरी हिस्से में एक और नए सीमेंट कारखाने के निर्माण के नींव रखी। ये परियोजना ताजिक सीमेंट कंपनी द्वारा सरकार के निर्देशों के तहत लगभग 16 हेक्टेयर क्षेत्र में 17 महीनों में पूरे किए जाएंगे। इसके वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.2 मिलियन टन सीमेंट होगी। निर्माण के दौरान 1,100 से अधिक लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा, जबकि संचालन शुरू होने पर 1,000 से अधिक स्थायी नौकरियां पैदा होगी। कारखाना स्थानीय सूचना पत्थर और अन्य खनिज संस्थानों के पास बनाया जा रहा है और इसमें आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दोनों नए सीमेंट संयंत्रों का पर्यावरण मानकों के अनुसार बनाने की योजना है, ताकि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। परियोजना के समीक्षा के बाद राष्ट्रपति ने स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी की सराहना की और उन्हें गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ताजिकिस्तान में तीसरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तोजे सोमोन आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए आवेदन 15 जून से 15 सितंबर तक लिए जा रहे हैं। ये महोत्सव 2023-2027 के राष्ट्रीय सिनेमा विकास योजना के तहत आयोजित हो रहा है और इसका उद्देश्य ताजिक सिनेमा का विकास, युवा फिल्म निर्माताओं का समर्थन और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण है। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, छायाकार, लघु फिल्म और अन्य श्रेणियों के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। 2024-2025 में बने फिल्मों इसमें भाग ले सकती है और चयन समिति द्वारा چونه جاینگه پیاریس نیوالوی تستای سمچر همه دوسر پرسر انجاره همه ریدیو که ساتره

0: दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।
1: नमस्कार प्रेषित तो हमारे अगले कार्यक्रम यहाँ में शिरकेंद क्षेत्र के सुंदर जगह उसके समृद्ध वनस्पति और जीवन जंतु के दुनिया तथा ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
2: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अजीज़ोवा दुला। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मली रहमान और दुशंबे के मेयर रुस्तम मली ने वारजोबा जिलों में एक नए सीमेंट उत्पादन संयंत्र के निर्माण कार्य के शुरुआत की। ताजिकिस्तान में तीसरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तोजे सोमोन आयोजित किया जाएगा और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। दुशंबे के वारजोबा जिलों में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मली रहमान और दुशंबे के मेयर रुस्तम मली ने एक नए सीमेंट संयंत्र के निर्माण कार्य की शुरुआत की। ये परियोजना सरकार के उस निर्देशों के तहत है जिसमें देशों में 4 नए सीमेंट कारखाने बनाने की योजना शामिल है, जिनके कुल उत्पादन क्षमता 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। नया संयंत्र लगभग 17 महीनों में तैयार किया जाएगा और इसके वार्षिक क्षमता 1.2 मिलियन टन सीमेंट होगी। निर्माण के दौरान 1,125 से अधिक लोगों को अस्थायी रोजगार मिलेंगे, जबकि संचालन शुरू होने पर 1,000 से अधिक स्थायी नौकरी पैदा होगी। परियोजना आधुनिक तकनीकी पर आधारित होगी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सीमेंट उत्पादन किया जाएगा। ये परियोजना स्थानीय निवेश और चीन की कंपनी सिनोमा के सहयोग से लागू की जा रही है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मली रहमान और दुशंबे के मेयर रुस्तम मली ने वारजोबा जिलों के उत्तरी हिस्से में एक और नए सीमेंट कारखाने के निर्माण के नींव रखी। ये परियोजना ताजिक सीमेंट कंपनी द्वारा सरकार के निर्देशों के तहत लगभग 16 हेक्टेयर क्षेत्र में 17 महीनों में पूरे किए जाएंगे। इसके वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.2 मिलियन टन सीमेंट होगी। निर्माण के दौरान 1,100 से अधिक लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा, जबकि संचालन शुरू होने पर 1,000 से अधिक स्थायी नौकरियां पैदा होगी। कारखाना स्थानीय सूचना पत्थर और अन्य खनिज संस्थानों के पास बनाया जा रहा है और इसमें आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दोनों नए सीमेंट संयंत्रों का पर्यावरण मानकों के अनुसार बनाने की योजना है, ताकि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। परियोजना की समीक्षा के बाद राष्ट्रपति ने स्थानीय उद्यमियों के भागीदारी की सराहना की और उन्हें गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ताजिकिस्तान में तीसरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तोजे सोमोन आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए आवेदन 15 जून से 15 सितंबर तक लिए जा रहे हैं। यह महोत्सव 2023-2027 की राष्ट्रीय सिनेमा विकास योजना के तहत आयोजित हो रहा है और इसका उद्देश्य ताजिक सिनेमा का विकास, युवा फिल्म निर्माताओं का समर्थन और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण है। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, छायाकार, लघु फिल्म और अन्य श्रेणियों के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। 2024-2025 में बने फिल्मों इसमें भाग ले सकती है और चयन समिति द्वारा چونی جایینگه پیاریس نیوالوی تستایی سمچر همه دوسر پرسر انجاره همه ریدیو که ساتره

0: मजबूत करना केवल सरकार के जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। हर नागरिक को ये समझना चाहिए कि शांति स्थिरता और राजनीतिक सुरक्षा के एक शांतिपूर्ण जीवन और समाज के स्थायी विकास का आधार है। एकता के बिना कोई बेहरामस समाज वास्तविक प्रगति हासिल नहीं कर सकता। इसके साथ ही सांस्कृतिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया के भूमि का निष्पक्षता की भावना को विकसित करने और राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये युवाओं के स्वास्थ्य, सोच के निर्माण और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे आचरण और कार्यों में माध्यम से मित्रता आपसे समाज और राष्ट्र एकता को मजबूत करने में योगदान देना चाहिए। केवल इसी प्रकार हम अपने प्रिय तजिकिस्तान को और अधिक सुंदर विकसित तथा शांति और स्थिरता में भरपूर बनाए रख सकते हैं। प्रतिभागियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि देश का प्रत्येक नागरिक शांति और राष्ट्र एकता की उपलब्धियों की रक्षा और उन्हें सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे। केवल आपसे समान सहयोग और एकजुटता के वातावरण में ही राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। सम्मेलन के समापन पर राष्ट्र एकता को मजबूत करने, राज्य नीति के सफल कार्यान्वयन तथा सामाजिक सहयोग के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनेक व्यक्तियों और प्रतिनिधियों को प्रशंसित पात्र एवं समापन पात्र बरहना किए गए। उपस्थित लोगों ने स्वतंत्र तजिकिस्तान की उन्नति और समृद्धि के लिए अपने रचनात्मक प्रयासों को आगे बेहद जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त के, जैसे कि तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के शिक्षा, सांस्कृतिक और सूचना विभाग के विद्वान सईदुल्लाह कुवतलीजोदा कहते हैं।
1: وعادت ملی برای نه تنها ملت ما، برای تمام خلق ملت های جهان و در مجموع کل جهان ارزش واقعی بزرگ دارد. از روزی که
0: راشتا یکتا کیوال تاجیک لوگون کی لیه نه بلکه دنیا کی سبھی جاتیو اور راشترو کی لیے واسطو میں ایک بہت بڑا مولیا رکھتی ہے منو کی سیتات کی شروعات سے ہے وہ ہمیشہ ایسا پریاس میں رہا ہے کہ وہ شانتی استارتا اور اپ سے سماج کے واتاورن میں جیون ویاتیت کرے کیونکہ کیوال ایکتی کی استاتی میں ہے سماج وکسیت ہو سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے اور آنے والے پیڑھیوں کے لیے سمنجان کے जीवन सुनिश्चित कर सकता है। एकता और सद्भाव लोगों को एक दूसरे के साथ मित्रता के वातावरण में रहने, मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और समाज के प्रगति के लिए मिलकर प्रयास करने का अवसर प्रदान करते हैं। इतिहास ये दर्शाता है कि जिस बहुराष्ट्र में आपसे समाज और एकता का वर्चस्व रहा है उसने महान उपलब्धियां हासिल की है। आधुनिक दुनिया में बहुराष्ट्र एकता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि वैश्वीकरण के प्रयागराज देशों और लोगों को एक दूसरे के और करीब ला रही है। ऐसे में केवल एकजुट समाज ही अपने राष्ट्र हितों की रक्षा कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने स्थिति को मजबूत बनाए रख सकता है। इसलिए एकता की भावना का विकास, मानवीय मूल्यों का सम्मान और लोगों के बीच मित्रता को मजबूत करना हर समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है। न्यूज़ वाशोइरा रेडियो ओज़ तोजे।

0: दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।
1: नमस्कार प्रेषितों, हमारे अगले कार्यक्रम में हम शिरकेंद क्षेत्र के सुंदर जगह, उसके समृद्ध वनस्पति और जीवन जंतु के दुनिया तथा ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।